0: इन्हें अक्सर कुत्ते टेम्पेस्ट ना बने बता रहे थे इसको 0708-082-321 एवलिन लियोनार्ड आखने को सिर तरह बात को में तो हम चकरों ने एंग में चकर चे सरे क्या है का यू माने का आपको नरे निजुमा मोस्टर की तमन अगलो अरावे तमुद के इन्हें अक्सर कुत्ते टेम्पेस्ट ना बने बता रहे थे इसको 0708-082-321 एवलिन लियोनार्ड आखने को सिर तरह बात को में तो हम चकरों ने एंग में चकर चे सरे क्या है का यू माने का आपको नरे निजुमा मोस्टर की तमन अगलो अरावे तमुद के इन्हें अक्सर कुत्ते टेम्पेस्ट ना बने बता रहे थे इसको 0708-082-321 एवलिन लियोनार्ड आखने को सिर तरह बात को में तो हम चकरों ने एंग में चकर चे सरे क्या है का यू माने का आपको नरे निजुमा मोस्टर की तमन अगलो अरावे तमुद के इन्हें अक्सर कुत्ते टेम्पेस्ट ना बने बता रहे थे इसको 0708-082-321 एवलिन लियोनार्ड आखने को सिर तरह बात को में तो हम चकरों ने एंग में चकर चे सरे क्या है का यू माने का आपको नरे निजुमा मोस्टर की तमन अगलो अरावे तमुद के इन्हें अक्सर कुत्ते टेम्पेस्ट ना बने बता रहे थे इसको 0708-082-321 एवलिन लियोनार्ड आखने को सिर तरह बात को में तो हम चकरों ने एंग में चकर चे सरे क्या है का यू माने का आपको नरे निजुमा मोस्टर की तमन अगलो अरावे तमुद के इन्हें अक्सर कुत्ते टेम्पेस्ट ना बने बता रहे थे इसको 0708-082-321
1: Lenjinga taje jerab tererwe agi lejine wan shalom yotte nigi leji shalom agine iwek tegi tugosteni ile shalom but gemi mwagi tugi le shalom ile yamini miyindo note nebo giptayata utogo tige nyanyun jichege tulle note ni mitini one sai note ni garara ne sai note ni mye eduget gu note nebo taje femme note ni noe mburi note nebo go lejine E dosi mi tenano, sai notene gararane, notene votat shalom in tati fame. Alle dingi tuge garibusana, imiten gebe verita ainona. Nyurwangi tuge ostenene, en elainda notoge enneba. Nyurwane elainda notene va asimuete, nyurwane elainda notene va Facebook. Koge jengi tu wilon terer, el line de notenibo Facebook. Koge jengi tu wilon terer baba, line de notenibo simet inyurwangura. En uy tu wilon teni emitigi tu gostonini, asinye inyurwangura engebe berwek tu wilon. Emiten gebe berta ainungi tu gostonini. You like ilaba tu limbo Facebook. Yotenika yi tu limbo Facebook tu gostonini. I jengi tu wilon terer gitu genyona. You comment baba. And you like daddy? Agi komen ini asinya agi you komen asinya sumanuna aja mas nasi nengongnya. And we tuh lihat ni mite gitu kos tene ne. Agi lain dah kura nasi nasi mite. Nothing knowledge ni mite ni kebab berita ainong itu kan?